नमस्कार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र। आज दिन है शनिवार, सत्संगवत 1947, असद महीने की आज 20वीं तिथि है। साथ ही अंग्रेजी सन 2026 जुलाई महीने की आज 11 तारीख है। इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में सुबह के 5:59 हुए हैं। मैं हूं आपका दोस्त इमरान और मैं आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आरंभ करता हूं आज की पहली सभा।

0: अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच मुक्त व्यापार समझौते सहित वाणिज्य और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत जारी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और प्रमुख उद्योग तथा खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की दो दिवसीय यात्रा के स्वागत में ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टॉवर को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये न्यूजीलैंड की 40 साल बाद पहली यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवई ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों को लाभ होगा।
2: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल

0: मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुँचा सकेंगे।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। ये सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन अहमद अल मुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा AI क्षेत्रों पर केंद्रित रही। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खेलों में फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम जानते हैं आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

रोज की तरह हम आरंभ करेंगे 6:10 पर भक्ति गीतों के साथ। 6:30 पर आप सुनेंगे महिला केंद्रित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। 7:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। 7:05 पर हम पेश करेंगे आज का दिन।

बीट्स ऑफ हार्ट कार्यक्रम का आनंद आप ले पाएंगे 7:30 पर। 8 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8:15 पर। 8:30 पर रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के शिलोंग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज़।

श्रोताओं, हम दे रहे थे आपको जानकारी आज की पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। आगे बढ़ते हैं। सुरों की रंगोली कार्यक्रम का आनंद आप लेंगे 8:40 पर। 9 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से पुअर आंचलिक बातोरी। 9:15 पर हम आरंभ करेंगे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों को, जिसमें सबसे पहले आप सुनेंगे खेलमा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे जॉन एलियाजर लोंगो और उनके साथियों के आवाज़ों में कुछ भक्ति गीत। रांगखोल कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 9:25 पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे कुछ लोकगीत, जिसके गायक कलाकार रहेंगे लालधारथांग रांगखोल और उनके साथी। 9:35 पर आप सुनेंगे जयंतिया कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपके लिए लेके आए हैं कुछ भक्ति गीत, जिसके गायक कलाकार रहेंगे ईविशा साधक और उनके साथी। आज के हमारे पहली सभा के स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों का शेष पेशकश रहेगा बेते कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे कुछ भक्ति गीत, गायक कलाकार रहेंगे एल थानी लाल सिंह और उनके साथी, और इसका समय रहेगा 9:45 का। सुबह के 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक आप आनंद ले पाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम का। इसी के बीच आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले मिड डे न्यूज, और उसके तुरंत बाद यानी कि 2:15 पर दोपहर समाचार। 2:30 से लेकर शाम के 5 बजे तक आप पुनः आनंद ले पाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम का। इसी के बीच 4 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। श्रोताओं, ये थी जानकारी आज की हमारी पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर यह है आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र। आइए अब हम आरंभ करते हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम।

इन्हीं गीतों के साथ यहीं पे समाप्त होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम आरंभ करते हैं महिला केंद्रित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम और सुनते हैं इन गीतों को।

0: ये अदा खूब है।
1: इन्हीं गीतों के साथ यही पे समाप्त होता है महिला केंद्रित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ आज ऑकलैंड में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
1: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
0: प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड सरकार द्वारा मुक्त व्यापार समझौते की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे तथा उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर 30 जुलाई को मतदान होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजय गोल मिकेल मेरिनो ने 28वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम आरंभ करते हैं आज का दिन, लेकिन उससे पहले सुनते हैं पोएम ऑफ द डे में इस पोएम को, जिसे प्रस्तुत किया है शहनाज बेगम ने।
3: गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शहनाज बेगम, स्टडिंग इन सेंट एग्नेस हायर सेकेंडरी स्कूल। टुडे आई विल रिसाइट अ पोएम। द टाइटल ऑफ द पोएम इज होप। होप इज द थिंग विद फेदर्स दैट पर्चर्स इन द सोल and sings the tune without the words, and never stops at all. The sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. I have heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked a crumb of me. Thank you.
2: अब पेश है आज का दिन।

श्रोताओं, जैसे कि हम जानते हैं आज 11 जुलाई है। आज का दिन साहित्य के सुनहरे पन्नों, अंतरिक्ष की रोमांचक उड़ानों और खेल के मैदान पर रचे गए नए इतिहास की याद दिलाता है, जहां एक और ये तारीख हमें बेहतरीन उपन्यासों के प्रसार, प्रकाशन और स्पेस टूरिज्म की शुरुआत के रोमांचक पल में ले जाती है, वहीं दूसरी ओर ये दुनिया की बढ़ती आबादी से जुड़े एक बहुत बड़े पड़ाव का भी प्रतीक है। भारत के महान लेखकों से लेकर दुनिया के दिग्गज वैज्ञानिकों तक की याद को समेटे हुए चलिए पलटते हैं 11 जुलाई के इतिहास के पन्ने।

चलिए शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण घटनाओं से। समुद्र से अनमोल रत्न निकालने के इतिहास में 1893 का दिन बेहद खास था। जापान के मशहूर उद्यमी मिकीमोटो कोकिची ने पहली बार कल्चर्ड पर्ल यानी सांस्कृतिक मोती को सफलतापूर्वक विकसित करने का कारनामा कर दिखाया था। खेल जगत के पन्नों में 1914 की ये तारीख सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। अमेरिका के महान बेसबॉल प्लेयर बेब रूथ ने मेजर लीग बेसबॉल में अपना पहला शानदार मैच खेला था, जिसके बाद वो इस खेल के सबसे बड़े दिग्गज बने। एशिया के राजनीति में 1921 का आज का दिन एक बड़ा बदलाव लेकर आया था। एक बहुत बड़े देश मंगोलिया ने आधिकारिक तौर पर चाइना से अपनी पूरी आज़ादी की घोषणा की थी।

साहित्य की दुनिया में 1960 को आज ही के दिन एक तहलका मच गया था। अमेरिका के जानी मानी लेखिका हर्प ली का मशहूर नॉवेल टू किल ए मॉकिंग बर्ड पहली बार प्रकाशित हुआ था, जिसे बाद में प्रतिष्ठित पुलित्जर प्राइज से भी सम्मानित किया गया। संचार के क्षेत्र में 1962 की 11 जुलाई को एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया गया था। दुनिया में पहली बार ट्रांसएटलांटिक सैटेलाइट टेलीविजन का प्रसारण सफलतापूर्वक किया गया था, जिसने दुनिया को एक दूसरे को बेहद करीब ला दिया। नागरिक अधिकारों के संघर्ष को सम्मान देते हुए 1977 में आज ही के दिन अमेरिका के महान नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर को मरणोपरांत प्रतिष्ठित प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया था।

अंतरिक्ष विज्ञान में 1969 का आज का दिन अमेरिका के लिए अहम था। देश का पहला स्पेस स्टेशन स्काईलैब अंतरिक्ष में अपनी शानदार यात्रा और कई सफल प्रयोग पूरे करने के बाद धरती के वायुमंडल में वापस लौट आया था। जनसंख्या के इतिहास में सन 1987 का आज का दिन एक बहुत बड़ा और चिंताजनक पड़ाव लेकर आया था। दुनिया की कुल आबादी ने पहली बार आधिकारिक तौर पर 5 अरब के आंकड़ों को पार कर लिया था। फुटबॉल के खेल में प्रेमियों के लिए 2010 का आज का दिन जश्न का पल था। साउथ अफ्रीका में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप के बेहद रोमांचक फाइनल मैच में स्पेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार ये विश्व खिताब अपने नाम किया था। स्पेस टूरिज्म की दुनिया में 2021 की 11 जुलाई एक नया रास्ता खोला था। ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रेंसन ने अपनी कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष की सफल उड़ान भरकर एक नया इतिहास रचा था।

श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ। स्कॉटलैंड के इतिहास में सबसे महान राजाओं में से एक और स्वतंत्रता के नायक रॉबर्ट द ब्रूस का जन्म सन 1274 में आज ही के दिन हुआ था। अमेरिका की राजनीति के अहम चेहरे और देश के छठे प्रेसिडेंट जॉन क्विंसी एडम्स ने 1767 में आज ही के दिन दुनिया में कदम रखा था। भारत के महान लॉयर और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पूर्व प्रेसिडेंट सी शंकरन नायर का जन्म केरल में 1857 को आज ही के दिन हुआ। बाल साहित्य के क्षेत्र में दुनिया भर में मशहूर और लोकप्रिय अमेरिकन राइटर ई बी वाइट का जन्म सन 1899 में आज ही के दिन हुआ।

दुनिया की पहली काम करने वाली लेजर का सफलतापूर्वक आविष्कार करने वाले महान अमेरिकन साइंटिस्ट थियोडोर माइमान ने 1927 में आज ही के दिन जन्म लिया था। दुनिया भर में अपनी फैशन कंपनी के लिए पहचाने जाने वाले मशहूर इटालियन डिजाइनर जॉर्जियो अरमानी का जन्म 1933 में आज ही की तारीख को हुआ था। अंग्रेजी साहित्य में भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाले मशहूर राइटर अमिताभ घोष का जन्म 1956 में आज ही के दिन हुआ।

साहित्य का प्रतिष्ठित पुलित्जर प्राइज जीतने वाली मशहूर इंडियन अमेरिकन लेखिका झुम्पा लहिरी का जन्म लंदन में सन 1967 को आज ही के दिन हुआ था। टेनिस के कोर्ट में अपनी शानदार प्रतिभा का लोहा मनवाने वाली और वर्ल्ड नंबर वन रह चुकी मशहूर टेनिस खिलाड़ी कैरोलिन वोज़नियाकी का जन्म सन 1990 में आज ही के दिन हुआ। अपनी बेहतरीन आवाज और गानों से पूरी दुनिया में पहचाने जाने वाली मशहूर कैनेडियन सिंगर एलेसिया केरा का जन्म सन 1996 में आज ही के दिन यानी 11 जुलाई को हुआ था।

अब श्रोताओं जानते हैं कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जिनका निधन आज ही के दिन हुआ। खगोल विज्ञान और गणित के क्षेत्र में शानदार काम करने वाले मशहूर अमेरिकन साइंटिस्ट साइमन न्यूकॉम का निधन 1909 में आज ही के दिन हुआ। अमेरिका के सबसे मशहूर और महान कंपोजर जॉर्ज गेर्शविन ने सन 1937 में आज ही के दिन अंतिम सांस ली थी। साइंस फिक्शन साहित्य की दुनिया को नई दिशा देने वाले जाने माने अमेरिकन राइटर जॉन डब्ल्यू कैम्बेल का निधन सन 1971 में आज ही के दिन हुआ। थिएटर और फिल्म की दुनिया के महात्मन कलाकारों में गिने जाने वाले मशहूर ब्रिटिश एक्टर लॉरेंस ओलिवियर ने सन 1989 में आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा था।

पनामा की राजनीति के बेहद प्रभावशाली नेता और पूर्व प्रेसिडेंट आर्नुल्फो अरियास का निधन 1991 में आज ही के दिन हुआ। हिंदी साहित्य के महान रचनाकार, शानदार राइटर और मशहूर नाटककार भीषम सहनी का निधन 2003 में आज ही के दिन हुआ। अमेरिका के मशहूर बैंकर, पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाला लॉरेंस रॉकफेलर ने 2004 में आज ही के दिन अंतिम सांस ली थी। अमेरिका के पूर्व फर्स्ट लेडी और पर्यावरण को हरा भरा बनाने की बड़ी समर्थक लेडी बर्ड जॉनसन का निधन 2007 में आज ही के दिन हुआ।

वीडियो गेम की दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति लाने वाले दिग्गज और निंटेंडो कंपनी के प्रमुख सातोरू इतावा ने 2015 में आज के दिन दुनिया से विदाई ली थी। दुनिया भर में

मशहूर और कई भाषाओं में अनुवादित किए गए नोवेल द अनबियरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग के महान राइटर मिलन कुंदेरा का निधन 2023 में आज ही के दिन हुआ था। अब कार्यक्रम के अंत में आज मनाए जाने वाले एक बेहद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में बात करते हैं। आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बहुत ही प्रमुखता के साथ मनाया जा रहा है। साल 1987 में आज ही के दिन जब दुनिया की आबादी ने 5 अरब का आंकड़ा छुआ था, तभी से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई। इसका मुख्य उद्देश्य तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और संसाधनों पर पड़ने वाली भारी दबाव के बारे में लोगों को जागरूक करना है। ये दिन हमें परिवार नियोजन, गरीबी उन्मूलन और मातृ स्वास्थ्य जैसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान देने की प्रेरणा देता है, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संतुलित और बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। और इसी के साथ हम समाप्त करते हैं आज का दिन। अब जाते जाते आइए सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत।

0: आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी गीत।
1: आपके गीत दोस्तों FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र। श्रोताओ, आइए अब हम आरंभ करते हैं बीट्स ऑफ हर्ट कार्यक्रम। श्रोताओ, कुछ गीत ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुनाई नहीं देते बल्कि दिल में उतर जाते हैं। उन्हें सुनते ही कोई पुरानी याद, कोई मुस्कुराहट या जिंदगी का कोई खूबसूरत पल आंखों के सामने आ जाता है। तो आइए ऐसे ही कुछ बेहतरीन गीतों के साथ शुरू करते हैं आज का ये सफ़र।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

जिंदगी की दौड़ में हम अक्सर मंजिल के पीछे भागते हैं, लेकिन कभी कभी रुककर पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी होता है, क्योंकि कई खूबसूरत यादें वही हमारा इंतजार कर रही होती है। चलिए अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जो पहली बार दिल में दस्तक देने वाला एहसास को बड़ी मासूमियत से पेश करता है।

कई बार जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जिन्हें हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन उन्हें याद जरूर रख सकते हैं। शायद यही वजह है कि कुछ गीत हर बार सुनने पर नई यादें छोड़ जाता है। अब सुनते हैं एक ऐसा जोशीला और मुस्कुराहट से भरा गीत।

जिंदगी भी एक सफर है। हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ लोग मिलते हैं तो कुछ यादें बन जाती है। मंजिल अपनी जगह है, लेकिन सफर का आनंद लेना भी उतना ही जरूरी है। इसी एहसास के साथ आइए अब सुनते हैं ये अगला गीत।

0: इसी खूबसूरत गीत के साथ बीट्स ऑफ हार्ट में आज का ये सफ़र यही समाप्त होता है। उम्मीद है प्रस्तुत किए गए गीतों ने आपके कुछ यादों को ताज़ा किया होगा। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरे आज नौसेना में शामिल होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की, मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को

0: संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कार्य समय में मुक्त व्यापार समझौते के सम्पन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
1: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
2: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
1: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
3: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
4: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। हमारे विशाल इंप्रेसिव इकोनॉमिक जोन है, हमारे आइलैंड टेरिटरी है और यह जो रीजन है और आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, जो स्वयं आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन

0: सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
1: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बीओपीएस का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुस जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए दो शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,740 लोग घायल हुए हैं। वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
2: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रूमाल वगैरह से। अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार।
4: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर 1 विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थीं। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा, सरकार ने कहा हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, NGT सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेस्सी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दें, यादों से ऊर्जा लें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश की लिंडा नोस्कोवा से खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम आरंभ करते हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम।

इसी के साथ ही यहीं पे समाप्त होता है देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। श्रोताओं, अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के शिलोंग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज़।

0: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के शिलोंग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज।
1: हेलो हफलोंग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हफलोंग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हफलोंग, हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र। श्रोताओं, आइए अब हम आरंभ करते हैं सुरों की रंगोली कार्यक्रम। आज सुरों की रंगोली कार्यक्रम में हम आनंद लेंगे रूप कुमार राठौड़ के कुछ बेहतरीन गानों की।

आप सुन रहे थे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से पुअर आंचलिक बातोरी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र। श्रोताओं, आइए अब हम आरंभ करते हैं स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों के अंतर्गत खेलमा कार्यक्रम और सुनते हैं कुछ भक्ति गीत। गायक कलाकार रहेंगे जॉन एलियाजर हुलोंगो और उनके साथी।

इसी गीत के साथ यही पे समाप्त होता है खेलमा गीतों का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत अभी आपने सुना कुछ भक्ति गीत। गायक कलाकार थे जॉन एलियाजार हुलुंगो और उनके साथी। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए अब हम आनंद लेते हैं रंगोल कार्यक्रम का और सुनते हैं कुछ लोकगीत। गायक कलाकार रहेंगे लालधर थांग रंगोल और उनके साथी।

इन्हीं गीतों के साथ यही पे समाप्त होता है रांखोल गीतों का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आप आनंद ले रहे थे कुछ लोक गीतों का। गायक कलाकार थे लालदारथांग रांखोल और उनके साथी। ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। आइए अब हम आरंभ करते हैं जयंतिया कार्यक्रम का और आनंद लेते हैं कुछ भक्ति गीत का। गायक कलाकार रहेंगे इविशा शादाब और उनके साथी।

इन्हीं गीतों के साथ यहीं पे समाप्त होता है जैनदिया गीतों का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आपने सुना कुछ भक्ति गीत। गायक कलाकार थे ईविशा साधप और उनके साथी। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए अब हम आरंभ करते हैं बेते कार्यक्रम और आनंद लेते हैं कुछ भक्ति गीतों का। गायक कलाकार रहेंगे एल थ्लानी लालसिम और उनके साथी।

0: इन्हीं गीत के साथ यही पे समाप्त होता है बेते गीतों का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आप सुन रहे थे कुछ भक्ति गीत। गायक कलाकार थे एल थलानी लालसिम और उनके साथी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र। श्रोताओ, आइए अब हम आनंद लेते हैं विविध भारती के कार्यक्रम का। रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए सौम्या शर्मा की लिखी कहानी वह पुरानी बेंच। हार हमेशा मैदान में नहीं होती, कभी कभी वो इंसान के मन में होती है। ऐसा ही कुछ यश के साथ भी हुआ था। यश की उम्र लगभग 40 वर्ष थी। एक प्रतिष्ठित कंपनी में 15 वर्षों तक काम करने के बाद अचानक कंपनी बंद हो गई और वो बेरोजगार हो गया। कई महीनों तक नौकरी ढूंढने के बावजूद उसे सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे उसकी बचत खत्म होने लगी और आत्मविश्वास भी। हर सुबह वो अपने शहर के रेलवे स्टेशन पर जाकर एक पुरानी बेंच पर बैठ जाता। वहाँ बैठकर वो आती जाती ट्रेनों और लोगों को देखता रहता, बिल्कुल अपने बचपन की तरह। यश के पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे और छुट्टियों में वो अक्सर उसे स्टेशन ले जाया करते थे। यश घंटों वहाँ बैठकर लोगों और ट्रेनों की आवाजाही निहारा करता था, किंतु आज उसे लग रहा था कि जैसे सबकी जिंदगी आगे बढ़ रही है, केवल उसकी ही रुक गई है।

तरह उदास यश रोज वहां बैठा करता। एक दिन स्टेशन पर उसकी मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई। वो अपने हाथों से बने अचार और पापड़ बेचने दूसरे शहर जा रही थी। बातचीत में पता चला कि उनके पति का कई वर्ष पहले निधन हो गया था और उन्होंने अकेले ही अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उन्होंने यश को अपने हाथों से बने अचार भी चखाए और ये भी बताया कि किस प्रकार उन्होंने जीवन की हर कठिनाई का सामना करते हुए ये छोटा सा व्यवसाय खड़ा किया था। उनकी बातों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर एक अलग ही संतोष झलक रहा था। यश ये समझ ही नहीं पा रहा था कि जीवन में इतनी परेशानियां झेलने के बाद भी कोई इतना प्रसन्न और उत्साही कैसे रह सकता है। वो इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने की उद्घोषणा हुई। यश ने सोचा कि उनका भारी सामान होगा, इसलिए उनकी सहायता कर दे। जैसे ही वो सामान उठाने के लिए झुका, महिला ने मुस्कुराते हुए उसे रोक दिया और बोली, बेटा ये तो मेरा रोज का काम है, मैं इसे स्वयं संभाल लूंगी। ये सुनकर यश स्वयं को रोक न सका। उसने संकोच भरे स्वर में पूछा, माताजी यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं, जीवन में इतनी कठिनाइयां आने के बाद भी आप इतनी प्रसन्न कैसे रहती हैं? क्या कभी आपका मन हार मान लेने का नहीं हुआ? यश के प्रश्न को सुनकर पहले तो महिला मुस्कुराई। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई और चेहरे पर वर्षों के संघर्ष से उपजा आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जीवन में मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, अगर मैं हार मान जाती तो मेरे बच्चों का भविष्य भी हार मान जाता, इसलिए मैं चलती रही। और एक बात मैंने जीवन में और सीखी है, जब तक हम चलते रहते हैं जिंदगी भी चलती रहती है।

अपनी बात कहकर उन्होंने यश के सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और वो मुस्कुराते हुए अपनी ट्रेन की ओर बढ़ गईं। लेकिन उनके शब्द यश के मन में देर तक गूंजते रहे। जब तक हम चलते रहते हैं, जिंदगी भी चलती रहती है। अगले दिन यश फिर उसी रेलवे स्टेशन की बेंच पर आकर बैठ गया। तभी एक मनमोहक धुन ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वो धुन स्टेशन के प्रथम श्रेणी विश्राम गृह से आ रही थी। सुरों में ऐसी मिठास थी कि कुछ क्षणों के लिए यश अपनी चिंताएं भूल गया और उस संगीत के स्रोत की ओर बढ़ चला। उनकी मधुर आवाज सुनकर अनेक यात्री मंत्रमुग्ध हो गए थे और आसपास खड़े थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कुछ क्षणों के लिए पूरे स्टेशन का वातावरण ही बदल गया हो। यात्रियों की भागदौड़, ट्रेनों का शोर और प्लेटफॉर्म की चहल पहल सब उस संगीत के सामने फीके पड़ गए थे।

जब संगीत थमा तब तक यश उस विश्राम गृह के कमरे के बाहर पहुंच चुका था। वो दरवाजे पर खड़ा होकर उस कलाकार को निहार रहा था। तभी भीतर से आवाज आई, कौन हूँ भाई, क्या मेरा खाना आ गया? अचानक आवाज सुनकर यश थोड़ा घबरा गया और वहाँ से जाने के लिए मुड़ा। तभी उस व्यक्ति ने फिर बड़े स्नेह से कहा, अरे रुकिए, क्या मेरा खाना आ गया है? तभी यश को एहसास हुआ कि वो व्यक्ति दृष्टिहीन था। ये जानकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा और उसे देखता रहा। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए फिर पूछा, खाना आ गया? उसकी खुशबू तो नहीं आ रही। इस बार यश ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं, मैं खाना लेकर नहीं आया हूँ, दरअसल आपके धुन सुनकर यहाँ चला आया था, मैं तो बस एक राहगीर हूँ। ये सुनकर वह व्यक्ति कुछ क्षण शांत रहा, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। अच्छा, तो संगीत तुम्हें यहाँ तक खींच लाया, उसने हंसते हुए कहा। फिर उसने यश को पास बैठने का इशारा किया। हाँ बैठो, मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ, मेरे साथ ही भोजन लेने गए हैं, उनके आने में भी थोड़ा समय लगेगा, तब तक तुम ही मेरा साथ दे दो। यश बिना कुछ कहे उनके पास चुपचाप बैठ गया। उसे पता नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में होने वाली ये बातचीत उसके जीवन को एक नया दृष्टिकोण देने वाली थी। बातचीत के दौरान यश को महसूस हुआ कि सामने बैठा व्यक्ति न केवल एक असाधारण संगीतकार था, बल्कि एक अत्यंत विनम्र और सकारात्मक सोच वाला इंसान भी था। उसकी बातों में आत्मीयता थी और चेहरे पर एक अजीब सा संतोष। यश के मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था कि इतना प्रतिभाशाली और अच्छा इंसान होने के बावजूद भगवान ने इसके साथ ऐसा क्यों किया होगा। ये प्रश्न उसके मन में लगातार उठता रहा। अंततः वो स्वयं को रोक न सका और संकोच भरे स्वर में बोला, यदि आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? संगीतकार हल्के से मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, पूछो बेटा। यश कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आप इतने अच्छे इंसान हैं, इतना सुंदर संगीत रचते हैं, फिर भी भगवान ने आपसे आपकी दृष्टि छीन ली, क्या आपको कभी अपनी किस्मत से शिकायत नहीं हुई? यश के प्रश्न के बाद कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। संगीतकार के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी, मानो उसने ये प्रश्न पहले भी अनेक बार सुना हो। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, पहले बहुत होती थी, मैं हमेशा यही सोचता था कि भगवान ने मुझसे मेरी आंखें क्यों छीन ली, लेकिन एक दिन मेरे गुरु ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी, आपसे क्या छिपा है, आंखों के बिना अब ये सब कैसे संभव होगा? मेरी बात सुनकर गुरुजी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा, बताओ संगीत के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पाया। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उत्तर दिया, संगीत का वाद्य यंत्र। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, नहीं। फिर मैंने कहा, आवाज? उन्होंने फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं। मैंने तीसरी बार उत्तर दिया, संगीत की शिक्षा। इस बार भी उन्होंने कहा, नहीं। संगीतकार कुछ क्षणों के लिए रुक गया, मानो वो उस दिन को फिर से जी रहा हो। फिर गुरुजी ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा, ये तो बाद में सोचेंगे कि संगीत के लिए सबसे जरूरी क्या है, पहले ये बताओ कि जिन चीजों को तुम सबसे आवश्यक मानते हो, क्या वे अभी भी तुम्हारे पास हैं? मैंने बिना सोचे उत्तर दिया, हाँ, वे सब तो मेरे पास ही हैं गुरुजी। ये सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तो फिर शुरुआत कर दो। कुछ पलों तक तो मैं उनकी बात का अर्थ समझ ही नहीं पाया, लेकिन जब मैंने अपने ही दिए हुए उत्तरों के बारे में सोचना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी दृष्टि चली गई थी, पर मेरे वाद्य यंत्र मेरे पास थे, मेरी आवाज मेरे पास थी और वर्षों की साधना से प्राप्त संगीत की शिक्षा भी मेरे पास थी। मैं उस एक चीज के शोक में डूबा हुआ था जो मुझसे छिन गई थी, और उन अनमोल चीजों को भूल चुका था जो अभी भी मेरे पास थी। ये कहते हुए संगीतकार के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। उसने आगे कहा, उसी दिन मैंने तय कर लिया कि मैं अपनी कमी को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। ये कहकर उसने हारमोनियम पर एक मधुर सुर छेड़ा और कहा, जब मैंने अपनी कमी के बजाय अपनी क्षमता पर ध्यान देना शुरू किया, तभी मेरी जिंदगी बदल गई। और वो गाने लगा।

तभी उनके साथी भोजन लेकर कमरे में आ गए। बातचीत का सिलसिला वहीं थम गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मेरा इंतजार अब खत्म हुआ। फिर उन्होंने अपने साथी का परिचय करवाया और कहा, बेटा जीवन में खुश रहने का सबसे आसान तरीका है, जो नहीं है उसकी चिंता कम करो और जो है उसका सदुपयोग अधिक करो। यश जाने लगा तो उनके साथी ने मुस्कुराते हुए बताया, शायद आपको पता नहीं है लेकिन आप जिनसे बात कर रहे हैं वे देश के एक प्रतिष्ठित संगीत महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। इनके शिष्यों में कई प्रसिद्ध गायक और संगीतकार शामिल हैं। ये सुनकर यश कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। जिस व्यक्ति ने अपनी दृष्टि खो दी थी उसने हार मानने की बजाय अपने जीवन को इस तरह संवारा था कि आज वो न जाने कितने लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। यश वहां से लौट तो आया लेकिन उस सज्जन के शब्द और उनकी मुस्कान देर तक उसके मन में गूंजती रही। उसके मन में विचारों का एक नया द्वार खुल चुका था। उसे लगने लगा कि शायद समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उन्हें अपनी सोच में बना लेते हैं। विचार बदल रहे थे लेकिन निराशा ने अब भी यश का साथ नहीं छोड़ा था। एक सप्ताह बाद स्टेशन की उसी बेंच पर एक सैनिक आकर यश के बगल में बैठ गया। यश के चेहरे पर छाई निराशा को देखकर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है जवान, इतने हताश दिखाई दे रहे हो। यश ने अपनी नौकरी छूटने से लेकर भविष्य की चिंताओं तक सारी बातें उसे बता दी। सैनिक शांत भाव से उसकी बातें सुनता रहा, फिर वो बस मुस्कुरा दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। यश ने जब ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो हाथ असली नहीं बल्कि कृत्रिम था। वो सैनिक लगभग उसी की उम्र का था। सैनिक ने धीमे स्वर में कहा, ये हाथ मैंने सीमा पर एक युद्ध के दौरान खो दिया था। कुछ पल रुककर वो आगे बोला, उस दिन

दुश्मन लगातार हमला कर रहा था। मेरे कई साथी घायल हो चुके थे। मैंने अपना एक हाथ खो दिया और असहाय होकर अपने साथियों को संघर्ष करते हुए देख रहा था। उस समय मुझे लग रहा था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी आंखों में उस युद्ध की यादें छलकने लगी थीं। तभी मेरी नजर अपने एक साथी पर पड़ी। उसने अपनी एक आंख खो दी थी, खून बह रहा था, फिर भी उसने कपड़े से घाव बांधा और अपनी दूसरी आंख से दुश्मन पर नजर टिकाए रखा। वो लगातार जवाबी हमला कर रहा था। सैनिक ने गहरी सांस ली और कहा, उस जांबाज को देखकर मेरे मन में एक विचार आया, यदि वो एक आंख खोने के बाद भी लड़ सकता है तो मेरे पास तो अभी एक हाथ बाकी है। मैंने बिना देर किए दूसरे हाथ से बंदूक उठाई। उसे संभालना आसान नहीं था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। किसी तरह उसे सहारा देकर निशाना साधा और दुश्मन पर हमला शुरू कर दिया।

उस पल की बात याद करते हुए सैनिक के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान उभर आई। उस दिन हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, बल्कि अपनी परिस्थितियों के सामने हार ना मानने का संकल्प भी जीत लिया था। फिर उसने यश की ओर देखते हुए कहा, जवान, इंसान तब नहीं हारता जब वो कुछ खो देता है, वो तब हारता है जब जो बचा है उसकी कीमत भूल जाता है। मैंने एक हाथ खोया था, लेकिन दूसरा हाथ अभी भी मेरे साथ था। तुम्हारी नौकरी चली गई है, तुम्हारी योग्यता और हिम्मत नहीं। उस रात यश बहुत देर तक सोचता रहा। उसे एहसास हो चुका था कि वो अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान बना चुका था। सैनिक ने युद्ध में अपना एक हाथ गवाया था, अपने कई साथियों को खोया था, फिर भी उनके चेहरे पर संतोष था। उन माताजी ने भी जीवन की असंख्य कठिनाइयों का सामना किया था, फिर भी उनके चेहरे की मुस्कान फीकी नहीं पड़ी थी। और उस दृष्टिहीन संगीतकार ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, फिर भी उसके जीवन में आशा और उसके सुरों में उत्साह का प्रकाश आज भी विद्यमान था। इन तीनों ने कुछ न कुछ खोया था, फिर भी वे जीवन से नाराज नहीं थे। शायद समस्या मेरी परिस्थितियों में नहीं, मेरी सोच में थी। जीवन में मुश्किलें सबके हिस्से में आती हैं। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग उनसे हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उनसे सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही यश ने ये सोचा, उसने ठान लिया कि उसे कुछ करना है। अगले दिन जब यश स्टेशन पर बैठा लोगों को देख रहा था, तभी उसकी नजर एक परिवार पर पड़ी। वे पहली बार उस शहर में आए थे और होटल, टैक्सी तथा शहर के प्रमुख स्थानों की जानकारी के लिए इधर उधर भटक रहे थे। कोई उन्हें अलग दिशा बता रहा था, तो कोई उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर अधिक पैसे मांग रहा था। ये देखकर यश को एहसास हुआ कि ऐसी समस्या केवल उस परिवार की नहीं, बल्कि प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों की थी। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि यदि यात्रियों को सही जानकारी और उचित मार्गदर्शन एक ही स्थान पर मिल जाए, तो उनकी परेशानी काफी हद तक कम हो सकती है। उसी समय उसे उन तीनों लोगों की बातें याद आ गईं। वृद्धा का संघर्ष, संगीतकार का आत्मविश्वास और सैनिक का साहस। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद जीवन उसे किसी नए रास्ते की ओर ले जाना चाहता है।

यश ने अपनी बची हुई थोड़ी सी पूंजी इकट्ठा की और स्टेशन के बाहर एक छोटी सी मेज और कुर्सी लगाकर सूचना एवं सहायता केंद्र शुरू कर दिया। उसने एक साधारण सा बोर्ड बनवाया जिस पर लिखा था, यात्री सहायता केंद्र, सही जानकारी, उचित मार्गदर्शन। शुरुआत आसान नहीं थी। कई दिनों तक मुश्किल से कोई ग्राहक आता। कभी कभी पूरे दिन की कमाई इतनी भी नहीं होती कि उसका खर्च निकल सके। कई लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया। नौकरी नहीं मिली तो अब ये काम शुरू कर दिया, कुछ लोग ताना मारते। लेकिन इस बार यश पहले वाला यश नहीं था। उसने हार मानने के बजाय धैर्य रखना सीखा था। वो मुस्कुरा कर लोगों की सहायता करता रहता। फिर धीरे धीरे यात्रियों को उसकी ईमानदारी और विनम्र व्यवहार पर भरोसा होने लगा। जो लोग उसकी मदद से संतुष्ट होते वो दूसरों को भी उसके बारे में बताते। कुछ ही महीनों में उसका छोटा सा सहायता केंद्र यात्रियों के लिए भरोसे का नाम बन गया। समय बीतता गया, यश ने अपने काम का विस्तार किया। उसने होटल बुकिंग, स्थानीय परिवहन, पर्यटन मार्गदर्शन और आपातकालीन सहायता जैसी सेवाएं भी शुरू कर दी। बढ़ते काम के साथ उसने कुछ बेरोजगार युवाओं को भी अपने साथ जोड़ लिया। कुछ वर्षों बाद वही छोटा सा सहायता केंद्र एक सफल ट्रैवल और यात्री सेवा संस्थान में बदल चुका था। वहां कई लोगों को रोजगार मिल रहा था और प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों की सहायता की जा रही थी। एक दिन यश अपने कार्यालय की खिड़की से बाहर देख रहा था और दूर उसे वही रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा था और उसके सामने रखी वही पुरानी बेंच भी। अनायास ही उसके कदम वहां की ओर बढ़ गए और वो जाकर खड़ा हो गया। उसने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान उभर आई। वही बेंच

यश कुछ देर तक उसी बेंच के सामने खड़ा रहा। उसके मन में अतीत की अनगिनत यादें उमड़ पड़ी, वृद्धा की मुस्कान, संगीतकार के शब्द और सैनिक का साहस। तभी एक युवक आकर उसी बेंच पर बैठ गया। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। वो बार बार अपना सिर झुकाकर गहरी सांसें ले रहा था। यश ने उसे कुछ देर तक देखा। उसे लगा मानो वह वर्षों पहले के स्वयं को ही देख रहा हो। यश धीरे धीरे उसके पास गया और बेंच पर उसके बगल में बैठ गया। कुछ पल तक दोनों के बीच मौन छाया रहा। फिर यश ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है जवान, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? युवक ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसके भीतर दबा हुआ दर्द शब्दों में निकलने लगा। उसने अपनी असफलताओं, बेरोजगारी और भविष्य की चिंताओं के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसकी बातें सुनकर यश की आंखों के सामने अपना ही अतीत घूम गया। वो हल्का से मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें तीन लोगों की कहानी सुनाता हूँ। और फिर उसने उस वृद्धा, उस दृष्टिहीन संगीतकार और उस सैनिक की कहानी सुनानी शुरू कर दी, जिन्होंने कभी उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। कहानी समाप्त होते होते युवक के चेहरे पर भी आशा की एक हल्की सी किरण दिखाई देने लगी। यश बेंच से उठा और मुस्कुराते हुए बोला, याद रखना दोस्त, जीवन में अंधेरा स्थायी नहीं होता, बस चलते रहना पड़ता है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। कुछ कदम चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो युवक अब पहले की तरह निराश नहीं लग रहा था। उस पल यश को एहसास हुआ कि वर्षों पहले जिन तीन अनजान लोगों ने उसकी मदद की थी, आज वही कहानी किसी और के जीवन में आशा जगा रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, शायद सकारात्मक सोच की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती रहती है, ठीक वैसे ही जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जल उठता है।

जीवन में सभी कुछ ना कुछ खोते ही हैं, परंतु जो बचता है उसी से नया भविष्य बनाना हमारे हाथ में है। सकारात्मक सोच परिस्थितियों को नहीं बदलती, लेकिन परिस्थितियों का सामना करने की हमारी शक्ति को बदल देती है, और यही शक्ति हमें सफलता तक पहुंचाती है।

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे सौम्या शर्मा की लिखी कहानी वो पुरानी बेंच, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

पेंटर बाबू फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में, रचना थी कतील शिफाई की। आइए अब सुने ये गाना, फिल्म का नाम हीर राँझा। मोहम्मद रफी की आवाज, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत है।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: फलन बहुत ही कम होता है। लाल मकड़ी कुटकी शिशुओं और वयस्कों की कॉलोनियां पत्तियों की निचली सतह पर रहती हुई उनका भरण करती है। जैसे जैसे कुटकियों की संख्या बढ़ती है सफेद शुकियों की संख्या भी बढ़ जाती है। अंत में पत्ती विरंजित होकर सूख जाती है। कुटकियां पत्तियों की निचली सतह पर बड़ी संख्या में बनी रहती है। संक्रमित पत्तियां धीरे धीरे ऐंठने लगती हैं और अंत में सिकुड़ती हुई भंगुर हो जाती है। भारी संक्रमण होने पर फल भी प्रभावित होता है। ये कुटकियां महीन जाल भी बनाती हैं। सूत्रकृमि जड़गांठ सर्वाधिक विशेष लक्षण पौधों के जड़ प्रणाली में गांठों या फिर पुटियों का बनना है। ये पुटियां एकल या फिर अनेक होती हैं। सूत्रकृमि के प्रकोप से पौधों की बढ़वार रुक जाती है। पत्तियों का हरापन गायब हो जाता है और मुरझाने के लक्षण दिखाई देते हैं। फलन भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। प्रभावित खेत पर पौधे के धब्बे जैसे दिखाई देते हैं।
1: सर्वश्रेष्ठ किसान का पुरस्कार मिलता है हरिया को। हरिया अब आप सबको बताएंगे अपनी सफलता का राज।
2: मेरे किसान भाइयों और बहनों, आप भी अपने खेतों में उन्नत फसल उगा सकते हैं।
3: वो कैसे?
2: बस जब भी कोई समस्या हो तो तुरंत मिलाइए ये नंबर 1800-1501551।
4: ये किसका नंबर है भाई?
2: किसान कॉल सेंटर का, जहाँ विशेषज्ञ आपको खेती की समस्याओं का हल देंगे तुरंत।
3: अरे भाई, विशेषज्ञ हर समय थोड़े ही बैठा मिलेगा?
2: बिल्कुल मिलेगा मेरे भाई, साल के 365 दिन मिलेगा, वो भी सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक।
4: पर भैया, लंबी बात करेंगे तो पैसे बहुत लगेंगे।
2: कोई पैसे नहीं, मोबाइल से या दूसरे फोन से किसान कॉल सेंटर मुफ्त कॉल करो, सलाह के भी पैसे नहीं।
5: सच
2: 16 आने सच।
6: किसान भाई, खेती की समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801551 पर मुफ्त संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
0: बातें करते हैं बैंगन की फसल में समेकित नाशी जीव नियंत्रण। तो नर्सरी अवस्था में आप क्या क्या कर सकते हैं, जान लेते हैं इसके बारे में। जुलाई से अगस्त के दौरान ढेचा का हरी खाद के रूप में प्रयोग करें। आद्र गलन आदि से रोकने और अच्छी जल निकासी के लिए जमीन में 10 सेंटीमीटर की ऊंची क्यारी बनाकर ही नर्सरी तैयार करें। जून के महीने में मिट्टी सौरीकरण के लिए 3 सप्ताह तक 0.45 मिलीमीटर मोटी पॉलीथीन की चादर बिछाएं, जिससे वृद्धावाहित कीटों जीवाणु मुरझान जैसे रोग और सूत्र कृमियों को कम करने में सहायता मिले। लेकिन ये ध्यान रखें कि सौरीकरण के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी मौजूद हो। 3 किलोग्राम अच्छी पुरानी गोबर की खाद में 250 ग्राम कवकीय विरोधी ट्राइकोडर्मा को मिलाएं और कल्चर के समृद्ध बनाने के लिए 3 सप्ताह तक ऐसे ही रखा रहने दें। 21 दिनों के बाद इस सामग्री को 3 वर्ग मीटर की क्यारियों में मिलाएं। बैंगन के फल बेधक प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करें। डैम्पिंग ऑफ और जड़ गलन जैसे समस्याओं से नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा 1% के साथ बीज उपचार नर्सरी उपचार बीज उपचार करना चाहिए। मुख्य फसल के लिए बैंगन की फसल में सफेद मक्खी आदि के लिए पीले चिपचिपे फंदे या फिर डेल्टा फंदे 2 से 3 प्रति एकड़ की दर से लगाएं। चूसक नाशी जीवों और पत्ती मोड़क कीट को नियंत्रित करने के लिए 1-1 सप्ताह के अंतराल पर NSKE 5% के 2 से 3 छिड़काव करें। अगर सफेद मक्खी या अन्य चूसक कीट नाशी जीवों का प्रकोप अब भी आर्थिक हानि सीमा से ज्यादा हो तो 250 से 340 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 100 लीटर पानी में फेनप्रोपेथ्रिन 30 ईसी या फिर डायफेंथोयूरॉन 50 WP 600 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पानी में घोलकर इसका छिड़काव करना चाहिए। बैंगन की फसल में छोटी पत्ती रोग से प्रभावित पौधों को छटाई करके निकाल देना चाहिए। बैंगन की फसल में आरंभिक अवस्थाओं में समय समय पर क्षतिग्रस्त प्ररोहों को काट देना चाहिए। बैंगन की फसल में 10 प्रति एकड़ की दर से पक्षियों को आकर्षित करने के लिए पक्षी ठिकाने बना दें। NSKE के छिड़कावों से बेधक कीटों का प्रकोप बहुत कम हो जाता है। इसमें नीम के तेल 1% का प्रयोग करना भी बेधकों के संक्रमण को कम करने में सहायक सिद्ध होता है। सूत्रकृमियों तथा बेधकों से होने वाले क्षति को कम करने के लिए रोपाई के 25 और 60 दिन के बाद

0: पौधों के कतारों के साथ साथ मिट्टी में 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से नीम की खली का उपयोग करें। बैंगन की फसल लगातार उगाने से बेदकों और मूझन रोग का संक्रमण अधिक होता है, इसलिए गैर सोलेनेसी किस्मों की फसलों को अपनाते हुए उचित फसल क्रम का पालन करना चाहिए। बैंगन की फसल प्रणाली में सामान्य रूप से दिखाई देने वाले प्राकृतिक मित्र कीटों की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये बैंगन की फसल के लिए लाभकारी होते हैं, इसीलिए इन मित्र कीटों का संरक्षण करना चाहिए। तो इनकी रक्षा के लिए रासायनिक दवाओं का छिड़काव नहीं करना चाहिए। श्रोताओं, किस्मों के अनुसार 60 से 70 दिनों में फल तोड़ने लायक हो जाते हैं। इस प्रकार 8 से 10 तुड़ाई तक की जा सकती है। किस्मों के अनुसार इसकी उपज प्राप्त की जा सकती है। इसके कुछ संकर किस्में हैं। बैंगन की उन्नत किस्मों की तुलना में संकर जातियां बहुत अलग होती है, जैसे बीज की मात्रा, अंतराल, खाद की मात्रा और फलों का वजन आदि। तो श्रोताओं, अभी हम बातें कर रहे थे बैंगन की खेती के बारे में, और इससे जुड़ी जो भी बातें हैं, जैसे कि खाद, उर्वरक या कीटनाशक के बारे में जितनी भी जानकारी दी है, ये कृषि विशेषज्ञों के बताए गए नियम के अनुसार आपको जानकारी दी गई है। अगर इसके बारे में आप और जानकारी पाना चाहते हैं तो आप किसी कृषि विशेषज्ञ की सलाह लें, जिला कृषि विभाग या फिर कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। तो श्रोताओं, इसी के साथ आज के किसान वाणी की इस कड़ी को हम यहीं पर समेटना चाहेंगे। जाने से पहले हम अपने सभी सुनने वाले श्रोताओं से कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े कुछ बातें हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। कॉल करने के लिए आप हमारा नंबर लिख लीजिए। हमारा नंबर है 03673-2999-05। कॉल करने का समय रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। या फिर आप सीधे हमारे कार्यालय में आकर हमसे मिल भी सकते हैं कार्यालय के समय पर। तो श्रोताओं, इसी के साथ हम समेटना चाहेंगे आज के किसान वाणी की इस कड़ी को।
1: तो श्रोताओं, आपसे हमारे फिर मुलाकात होगी हमारे अगले किसान वाणी कार्यक्रम में एक नए कृषि संबंधित जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं दीप्ति
0: और मैं मलिनी आपसे अनुमति चाहते हैं।
1: नमस्कार।
2: किसान वाणी प्रायोजक थे भारत सरकार के कृषि मंत्रालय।

दोस्तों आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत किया था मेलोडियम और दीप्ति भट्टाचार्य ने। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अभी आप सुनेंगे टीचर्स प्रोग्राम का रिपीटेड ब्रॉडकास्ट, जिसे प्रस्तुत करेंगी अंकिता पॉल।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त अंकिता और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हाफ लॉन्ग फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हमारा खास कार्यक्रम टीचर्स प्रोग्राम, जहां हम बात करते हैं एजुकेशन से जुड़े इम्पोर्टेंट बातों पर। और ये कार्यक्रम आप सुन पाते हैं हर हफ्ते शनिवार रात 8:30 पर। श्रोताओं, आज के समय में एजुकेशन सिर्फ बुक्स और एग्जाम्स तक सीमित नहीं रह गई है, बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्पिरिचुअल और मॉरल वैल्यूज भी उतनी ही जरूरी है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य निर्मलेंदु ब्रह्मचारी जी, जो आनंद मार्ग स्कूल हाफलोंग के प्रिंसिपल है, जहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार, डिसिप्लिन और एक पॉजिटिव जीवन दृष्टि भी दी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी चर्चा एजुकेशन विद स्पिरिचुअल एंड मॉरल फाउंडेशन पर, और समझने की कोशिश करते हैं कि छोटी उम्र से बच्चों को वैल्यूज और स्पिरिचुअलिटी सिखाना क्यों जरूरी है। जी सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।
1: सबसे पहले मैं अपने आराध्य गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। बाद में आप सभी को धन्यवाद आभार करता हूं, क्योंकि आप यहां पे पहुंच करके आप बहुत ही अच्छे काम किए हैं, और आप आज जो इंटरव्यू लेंगे उसके लिए भी आपको अशेष धन्यवाद।
0: तो सर, जैसे आज हमारे कार्यक्रम का विषय हमने पहले बताया है एजुकेशन विद स्पिरिचुअल एंड मॉरल फाउंडेशन, तो उससे जुड़ के मैं पहला प्रश्न आपसे ये करना चाहूँगी कि सर, आज के समय में जब एजुकेशन ज़्यादातर मार्क्स और कंपटीशन पर फोकस करता है, आपके स्कूल में स्पिरिचुअल और मॉरल एजुकेशन को कैसे इंक्लूड किया जाता है?
1: आज के इस युग में आपका, जहाँ पे शिक्षा को केवल मार्क्स से ही देखा जाता है, वहाँ पे आनंद मार्ग प्रचार संघ एक ऐसा संस्था है जहाँ आपका मार्क्स बेसिस पे नहीं, बच्चों का जो चरित्र का गठन, चरित्र का निर्माण, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इससे हम लोग, जैसे बच्चों लोग जैसे ही हमारे स्कूल के अंदर प्रवेश करते हैं, सबसे पहले बच्चे लोग को सिखाया जाता है नमस्कार करना। नमस्कार करना यानी एक दूसरे को देख करके नमस्कार करना। एक दूसरे को हम लोग नमस्कार करने का मतलब कि हम उस शरीर के अंदर उस छिपे हुए आत्मा को नमस्कार करते हैं, उस परम पुरुष को नमस्कार करते हैं। इससे क्या होता है कि जितने भी बच्चे हैं सबके मन में ये भावना उत्पन्न होती है कि हम लोग जिसे नमस्कार कर रहे हैं वो उसके नाम को नमस्कार नहीं कर रहे, बल्कि हम लोग परम पुरुष को नमस्कार कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोग छोटे छोटे चीज़ों के द्वारा हम लोग बच्चों को ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, मार्क्स ही केवल नहीं है, मार्क्स मिलने से आप एक सफल इंसान बन सकते हैं, लेकिन एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं। एक अच्छे इंसान और एक सफल इंसान में बहुत अंतर होता है। सफल इंसान आज के डेट में अंबानी हुआ, अडानी हुआ, ये सब सफल इंसान है, लेकिन एक अच्छे इंसान बनना, जैसे महात्मा बुद्ध, ऊपर से आपका महादेव, ऊपर से आपका महावीर, तो हमारे आनंद मूर्ति जी, ये सब क्या है, ये सब है अच्छे इंसान, ये सब समाज के लिए, हमेशा समाज के डेवलपमेंट के लिए काम किए। लेकिन आज जो सफल इंसान है वे लोग अपना तिजोरी भरने के लिए काम कर रहे हैं।
0: जी जी सर, ये बहुत अच्छी चीज़ कही है आपने स्कूल के बारे में। सर, अभी मैं दूसरी चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगी कि छोटे बच्चों को जो स्पिरिचुअलिटी और मॉरल वैल्यूज समझाना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, तो आप उन्हें सिंपल तरीके से कैसे सिखाते हैं?
1: नहीं, आज के दौर में देखिए, छोटे बच्चों को सिखाना तो मुश्किल है जी। लेकिन कहावत है कि बच्चों के साथ बच्चा बनना। आप अगर बच्चों के साथ बच्चा बनिएगा तो ऑटोमेटिक बच्चे को भी समझ में आएगा। तो बच्चे को समझाने के लिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाते हैं, ऊपर से महापुरुष की जीवनियाँ पढ़ाते हैं। उनसे उन लोगों को क्या होता है, प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा मिलने के बाद उन लोगों को क्या करते हैं, जिससे जैसे जैसे प्रेरणा मिलती जाएगी, वैसे वैसे उसके अंदर सेवा भाव, दया भाव, परोपकार की भावना, दूसरों को सम्मान देना, ये सब चीज़ ऑटोमेटिक उसके शरीर के अंदर प्रवेश हो जाएगा, उसके माइंड के अंदर प्रवेश हो जाएगा। जिससे क्या होगा ना, वो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वो दूसरों को हमेशा सम्मान की नज़र से देखेगा, तो हमेशा दूसरों पे दया की नज़र से देखेगा, दूसरों को छोटे हो या बड़े हो या कोई भी कास्ट का, उसको सम्मान, उसको यथेष्ट सम्मान के साथ उसका धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। तो हम लोग इसी तरह से आपको बच्चों को छोटे छोटे रोल से, छोटे छोटे ड्रामे के तहत हम लोग बच्चों को सिखाते हैं।
0: जी जी सर, बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि बच्चों को कैसे सिखाया जाता है ये लाइफ की छोटी छोटी वैल्यूज जो है। सर, अभी मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि सर, आश्रम एनवायरनमेंट का बच्चों के बिहेवियर और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर क्या पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है?
1: देखिए, आज के डेट में एक आश्रम और एक स्कूल, अब हम लोग भी स्कूल में पढ़े, उस समय के स्कूल में और अभी के गवर्नमेंट स्कूल में हम लोगों ने देखा है कि आपका जो प्रिंसिपल सर है वो प्रेयर में प्रेजेंट नहीं होते हैं। कोई कोई टीचर लेट से आते हैं, कोई टीचर या तो जल्दी आ जाते हैं, कोई बच्चा लेट से आता है, नहीं तो कोई बच्चा जल्दी आ जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ एक निर्दिष्ट समय दिया हुआ रहता है, उस निर्दिष्ट समय में हर एक प्रिंसिपल हो चाहे या कोई भी क्लास टीचर हो, हर एक टीचर को हर एक बच्चे को उसी टाइम से बिफोर पहुँचना पड़ता है। बिफोर होने के बाद जब हम लोग प्रेयर रूम में एंटर करते हैं तो सभी लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। नमस्कार करने के बाद साथ में हम लोग एक साथ बैठते हैं। बैठ करके हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग संगच्छद हवन करते हैं। संगच्छद हवन करने के बाद क्या करते हैं, इसका मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब होता है कि हम लोग सब एक साथ मिल के रहेंगे, सब एक साथ हम लोग जितना भी मन है सब मन को मिल करके एक मन बनाएंगे, सब हम लोग परम पुरुष का तरह ध्यान देंगे। जैसे सोचिए आज के डेट में सपोज जैसे एक हिंदू बैठा है, एक मुस्लिम बैठा है, एक सिख बैठा है, क्रिश्चियन बैठा है, लेकिन सब बैठने के बाद क्या किया, अपना अपना जो गुरुदेव है, अपना अपना जो भगवान है उसको याद करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये क्रिश्चियन धर्म का है, ये हिंदू धर्म का है, ये मुस्लिम धर्म का है। हम लोग सब सोचते हैं क्या ना, मानव धर्म। सब हम लोग इंसान, हम लोग का धर्म क्या है ना, मानव धर्म। मानव मानव भाई भाई, ऊंचा किंबा नीचा ना है। तो इससे इसके तहत ये शिक्षा मिलती है बच्चे लोग को कि हम लोग सब एक साथ हैं, हम लोग सब एक जैसे ही हैं, सब परम पुरुष के बनाए हुए हैं और हम लोग सब इसी तरह से एक दूसरे से मिलजुल के और अपना व्यवहारिक रूप से रहते हैं।
0: जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है ये सारे जो हमारे प्रश्नों का उत्तर आप दे रहे हैं, बहुत अच्छे से एक एक प्रश्न का उत्तर मिल रहा है हमें, उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। सर, मैं एक और चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या आपके स्कूल में मेडिटेशन, योगा या कोई डेली प्रैक्टिसेस होती है जो बच्चों के मेंटल पीस और कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करती है?
1: ऐसे तो दूसरे स्कूल के बारे में मालूम नहीं, लेकिन हमारे गुरुदेव का सिस्टम दिया हुआ है, एक पद्धति है जिसमें हम लोग का जैसे प्रेयर रूम में जैसे एंटर करेंगे तो सब मिल करके पहले हम लोग ध्यान करते हैं, फिर ध्यान करने के बाद छोटी छोटी छोटी सी मेडिटेशन भी करते हैं। उस मेडिटेशन से क्या होता है, हम लोग इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है, बुद्धि और विकसित होती जाती है और मन चंचल होने से भी रुकता है। इसीलिए हम लोग के यहाँ सबसे पहले आनंद मार्ग की जितने भी मैंने स्कूल है ऑल वर्ल्ड में कहीं भी स्कूल है, प्रेयर के टाइम हमेशा मस्ट की आपको मेडिटेशन करा ही जाएगा। सबसे पहले मेडिटेशन, उसके बाद क्लास में एंट्री। क्यों, ताकि मेडिटेशन कराने से ये होता है बच्चों को शिक्षा में, पढ़ाई में वो माने बहुत ही सुचारू रूप से और सहायक होती है।
0: जी जी सर, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके अनुभव में अगर बच्चों को छोटी उम्र से मॉरल वैल्यूज़ और स्पिरिचुअलिटी सिखाई जाए तो उनके फ्यूचर पर इसका क्या असर पड़ता है?
1: एक कहावत है कि आज के नौजवान कल के भविष्य, ये छोटे छोटे बच्चे ही एक समय बड़े बनकर हमारे देश के भविष्य बनेंगे। तो ये छोटे छोटे बच्चे को अगर हम लोग मॉरल वैल्यूज़ और आपका अगर आध्यात्मिकता नहीं सिखाते हैं तो ये लोग समाज को एक सही मार्गदर्शक नहीं बन सकते, और समाज के लिए एक मार्गदर्शक बनना इसके बस की भी बात नहीं है। इसके चलते हम लोग आध्यात्मिकता और ये आपका मॉरल वैल्यू पे ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि मॉरल वैल्यू मीन्स चरित्र नीति, चरित्र गठन, और आध्यात्मिकता मतलब स्पिरिचुअल। इससे क्या होता है, स्पिरिचुअल से भावना सिखलाता है आनंद मार्ग के दर्शन के हिसाब से कि हम सब एक है, हम लोग सभी परम पुरुष के संतान हैं, सब परम पुरुष के पास से ही आए हैं और फिर परम पुरुष में ही जाकर के हम लोग को सबको मिल जाना है। और मॉरल वैल्यू से क्या होता है, चरित्र निर्माण का मतलब क्या होता है, चरित्र निर्माण का मतलब जैसे स्कूल में सोचिए कोई बच्चा है टिफिन नहीं लाया तो उस क्लास के दूसरे बच्चे क्या करते हैं, उसको ना अपना टिफिन से निकाल करके उसको खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं, क्योंकि वो नहीं लाया, वो भी तो हमारा भाई है। तो ऐसे विचार उन लोगों का मन में भर दिया जाता है ताकि वो सोचे नहीं भाई आज वो नहीं लाया तो आज हम लोग सब मिल करके उसके साथ हम लोग शेयर करेंगे, कल अगर मैं नहीं लाऊंगा तो फिर वे लोग हमारे साथ शेयर करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज जैसे कोई रबड़ नहीं लेके आया, कोई पेंसिल लेके नहीं आया तो उस क्लास के दूसरे बच्चे उसको क्या करते, हेल्प करते हैं। इससे दया की भावना, परोपकार की भावना जगती है बच्चों के मन में और जिससे बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारे डेवलप करते हैं। और यही सब बच्चे जब बड़े होंगे तो समाज में ये जो चोरी है, ये जो गुंडागर्दी है, ये सबको रोकने में ये सब बहुत बड़ा भूमिका निभा सकते हैं।
0: जी सर, बहुत सच बात है कि बच्चों को छोटी उम्र से अगर ये सब सिखाई जाए तो उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। सर, तो मैं आपसे, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके लिए आपसे कुछ जानना चाहूँगी कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि घर पर भी बच्चों में स्पिरिचुअल और मॉरल वैल्यूज़ कैसे डेवलप की जा सकती है?
1: देखिए, आज के युग में माने किसी का भी घर हो तो बच्चों का सर्वप्रथम शिक्षक कौन होता है, अभिभावक होता है। बच्चा सबसे पहले मम्मी और पापा से ही सब कुछ सीखता है। जब हम लोग माँ बोलना सीखते हैं तो मम्मी हम लोग को सिखाती है, बेटा माँ बोलो माँ बोलो, तो हम लोग धीरे धीरे माँ बोलते हैं, पापा बोलते हैं। एक चीज़ याद कीजिए, आज के दौर में भी इंसान सबसे पहले क्या होता है ना, इंसान बुराई को जल्दी कैच करता है और अच्छाई को कम कैच करता है। तो इससे क्या होता है, घर में अगर माहौल हमारा बढ़िया ढंग से रहे और अगर घर में हमारा झगड़ा झंझट ना हो, तो बच्चा भी क्या होगा, अपने अभिभावक से वो सब देख करके सीखेंगे, नहीं भाई हमारे मम्मी पापा ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं, अपना काम समय से करते हैं, तो उसको देखा देखी बच्चे भी ठीक उसी के पथ को अपनाएंगे। अगर घर में ही आपका झगड़ा होगा तो बच्चा क्या सीखेगा, बच्चा तो ऑलरेडी सब घर में वही सीखेंगे जो मम्मी पापा से सीख के सीखते हैं, तो बच्चा भी लास्ट में क्या सीखेंगे ना, झगड़ा झंझट सीखेंगे। तो ये सब चीज़ पे अभिभावक को ज़्यादा जोर देना चाहिए कि बच्चों के सामने गलत बातें नहीं करने का, बच्चों को हमेशा अच्छी आदत सिखाने का, बच्चे के सामने लड़ाई झगड़ा नहीं करने का, और हमेशा बच्चों के मन में दया भाव, परोपकार की भावना और दूसरों को सम्मान देना जैसी चीज़ें सिखाना चाहिए, ताकि ये सब चीज़ें बच्चे स्कूल विद्यालय में तो आपका बहुत कम ही समय बच्चे रहते हैं, ज़्यादातर समय घर में रहते हैं। तो ये ज़्यादा समय घर में रहने के चलते बच्चों को अगर अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाया, जैसे कहानियाँ हुआ या भगवान का आपका पूजा पाठ हुआ, तो बच्चों को क्या होता है इसमें स्पिरिचुअल पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और असर पड़ने से क्या होता है, ताकि ये बच्चे मतलब देश के लिए भविष्य बन सकते हैं।
0: जी सर, बहुत अच्छा लगा इस प्रश्न का जवाब जो हमारे पेरेंट्स के लिए था। आशा करती हूँ हमारे जो अभिभावक है वो इस मैसेज को अपनाएंगे। तो सर, अभी हम धीरे धीरे हमारे कार्यक्रम के अंत में पहुंचने वाले हैं, तो उससे पहले मैं आखिरी चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके हिसाब से एजुकेशन विद स्पिरिचुअल एंड मॉरल फाउंडेशन एक आइडियल सोसाइटी बनाने में कैसे हेल्प कर सकता है।
1: देखिए, आज के डेट में जितने भी आप उदाहरण उठा करके देख लीजिए, जो चोरी हुआ, डाकू हुआ, एक हम लोग बचपन में कहानी पढ़े थे अंगुलीमाल का डाकू।
0: जी,
1: अंगुलीमाल का डाकू क्या था, बचपन से ही आपका दुष्ट प्रकृति का था, दुष्ट स्वभाव का था। तो बाद में क्या हुआ, एक दिन महात्मा बुद्ध के शरण में जाने से क्या हुआ, महात्मा बुद्ध उसके जो मन में जितने भी प्रश्न थे सभी प्रश्न को बराबर उत्तर दिए, उत्तर देने के चलते क्या हुआ, अंगुलीमाल डाकू अपने बुराई का रास्ता छोड़कर सत्य की रास्ते पर चल पड़ा और उसका शिष्य बन गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, जैसे वाल्मीकि को ले लीजिए, उनका काम क्या था, कोई भी रास्ता से आने जाने वाले को पकड़ के बांध देता था और उसको सारा सामान लूट करके लेके घर लेके जाता था, जिससे अपने परिवार का जीवन निर्वाह करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, नारद भगवान स्वयं आकर के क्या किए, भिक्षुक का वेश में जा रहे थे, तो नारद भगवान को बांध करके चले गए। तो नारद भगवान बोलने लगे कि आप जो हमको बांध करके लेके जा रहे हो मेरा सामान किसके लिए, ना अपना फैमिली का, परिवार का जीवन निर्वाह करने के लिए, तो परिवार का जीवन निर्वाह करने के लिए आप लेके जा रहे हो ठीक हो, लेकिन आप जो ये गलत काम कर रहे हो जाकर के घर वालों से पूछ करके आइए कि ये जो आप काम कर रहे हैं तो क्या ये सही हो रहा है, ये काम सही है, और आपका ये पाप का भागीदारी क्या आपका घर वाले सभी लेंगे। तो बाद में वो वाल्मीकि वो अपने घर गए, जाके मम्मी पापा को बोले, अपने वाइफ को बोले कि भाई ऐसे ऐसे करके तो हम आपका पेट पाल रहे हैं, तो आप लोग क्या इसका भागीदारी बनेंगे या अंशीदार बनेंगे। तो उन लोगों ने बोला नहीं, ये तो आपका कर्तव्य है, हम लोग क्यों अंशीदार बनेंगे, हम लोग क्यों भागीदार बनेंगे। तो बाद में तो वो सोच में पड़ गया कि हम तो फैमिली के लिए पूरा ये सब कर रहे हैं, लेकिन फैमिली जब हमारा हमको अंशीदार या भागीदार नहीं होंगे तो फिर हम क्या कर रहे थे उतना दिन। तो बाद में वो नारद जी को रस्सी से जो बांधे हुए थे पेड़ में, उनको रस्सी खोलने के बाद उसके पेड़ पर गिर के बोले, नहीं गुरुदेव आप हमें रास्ता दिखाइए। तो बाद में बोले कि ठीक है, एक ही रास्ता है, आप राम राम जपते रहो। तो राम राम जपना तो नहीं सके, उस समय उनका मुंह से मरा मरा निकलने लगा, मरा मरा निकलते निकलते वो क्या राम राम जपने शुरू कर दिए। तो बाद में वही रत्नाकर आज के डेट में वाल्मीकि कहलाए। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि आज के डेट में जो इंसान का जो चरित्र है उसको गठन करना सबसे बड़ा जरूरी काम है। उसका गठन तभी हो सकता है जब आप उसको स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता के पथ पर, मॉरल वैल्यू के पथ पर आप लेकर आते हैं, तभी आप वो संभव है। अगर ये सब चीज़ नहीं ला सकते तो ये सब संभव नहीं है। इसी के चलते हमारे गुरुदेव सबसे पहले जम नियम दिए हैं। तो इसी तरह से आपका ये सब चीज़ करने के माध्यम से ही हमारे जो मॉरल वैल्यू है, जो नैतिक चरित्र का निर्माण है, वो आपका गठन किया जा सकता है, अन्यथा यह संभव नहीं।
0: जी, आपने जो आखिर में हमें सब बोली है उसके लिए बहुत अच्छा लगा है, और हमें बहुत खुशी है कि आपसे जुड़ के हमें ये कार्यक्रम करने का मौका मिला है, और आपने अपना कीमती समय हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: आपका काफ़ी मैंने बहुमूल्य समय हमने लिया, आपने हमको दिया, इसके चलते हम भी आपके आभारी हैं, और जो ऑल इंडिया रेडियो है उनके भी हम आभारी हैं हमारे इंटरव्यू ले सके, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, आज की इस चर्चा से हमें ये समझने को मिला है कि एजुकेशन का असली मकसद सिर्फ नॉलेज देना नहीं बल्कि बच्चों को अच्छे इंसान बनाना भी है। जब पढ़ाई के साथ स्पिरिचुअल और मॉरल वैल्यूज जुड़ जाती है तब बच्चों का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और भी स्ट्रांग हो जाता है। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे आज के मेहमान को, जिन्होंने अपने अनुभव और विचारों से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका दिया है। इसी के साथ आज का हमारा कार्यक्रम यही समाप्त होता है। मैं हूँ अंकिता, आपसे अभी इजाजत लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए देते रहिए हमें ढेर सारा प्यार और सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलोंग फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार।

दोस्तों, आप सुन रहे थे टीचर्स प्रोग्राम, जिसे प्रस्तुत किया था अंकिता पॉल ने। FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
1: मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
3: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव

0: अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहाँ 8436789155237 और 8433452414 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देशभर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
3: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में

0: ऐसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रोपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टुकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में 1 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना विकेट गवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। दोस्तों, अभी आप सुनेंगे आप सभी का पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग, जिसे प्रस्तुत करेंगी रीनी देव।

0: नमस्कार दोस्तों, हेलो हाफ लॉन्ग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आज की होस्ट, आपकी दोस्त रिनी। श्रोताओं, चलिए कार्यक्रम को आरंभ करते हुए लेते हैं आज का पहला कॉल। हेलो हाफ लॉन्ग।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से आपका नियमित श्रोता इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ और आपसे बातचीत हो रहा है। डबल खुशी बढ़ रहा है और लगा बहुत अच्छा लगा मैडम। और दिशा मूर्ति के मनन के साथ में अपने पसंद के गीत बताता हूँ
0: जी।
1: जैसा को तैसा का गाना है ना, अब तो सावन जीने लगी, गायक का लता मंगेशकर किशोर कुमार
0: जी।
1: सबसे पहले गीत आपको केंद्र निर्देशक साहब को, पूरे भारत राष्ट्र श्रोता को, आकाशवाणी हाफलांग में जुड़े सभी लोगों को, आपके प्रियजन के रिश्तेदारों को, आपकी सैनियों को, आकाशवाणी हाफलांग में जुड़े सभी दूसरे भाई बहनों को, स्टाफ कर्मचारी को, हाल अकेडमिक फ्रांस ग्रुप में जुड़े श्रोताओं को, पूरे भारत राष्ट्र श्रोता को जुड़े पहुंचाने के लिए धन्यवाद। इसका प्रसारण शनिवार रविवार को रात 9 बजे होगा। जरूर सुना दीजिए मैडम, पहुंचाने के लिए आपकी बहुत बहुत
0: धन्यवाद। चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।

0: हेलो हाफ लॉन्ग।
1: नमस्कार
0: नमस्कार, बताइए आपका नाम क्या है?
1: मैम, मैं छत्तीसगढ़ बेमेतरा जिला से बोल रहा हूँ मैम। आपका अपना साथी सुरेश कुमार सारथी।
0: सुरेश कुमार जी, बताइए क्या गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: क्या है, बरसात का मौसम है मैम
0: जी
1: और इधर बारिश बहुत हो रही है।
0: जी जी बिल्कुल।
1: छत्तीसगढ़ में किसान धान का कटोरा छत्तीसगढ़ कहा जाता है, इसलिए बुआई का काम और खेती बाड़ी का काम शुरू हो गई है मैम।
0: अच्छा, कैसी चल रही है बुवाई?
1: बुआई अभी शुरुआत हो गई है, आधा से ज्यादा बुआई का काम हो गया है मैम।
0: जी बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: आज सुना दीजिए मैम, वो प्यापा सावन का है मैम, मेघारे मेघारे मेघारे मेघारे।

0: हेलो हाफलॉन्ग,
1: हेलो,
0: नमस्ते। बताइए क्या है आपका नाम?
1: मैं रमेश पत्र गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट आसाम से बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: खुदा तुमसा कोई प्यारा डेडिकेशन है मेरा।
0: जी
1: डेडिकेशन भाईकोन मुंडा, अमल बसुमतारी, बिमल बसुमतारी, जोगेंद्र रंकी, हितेंद्र दास, देवाशीष हजारिका, प्रेमजीत चक्रवर्ती, धर्मवीर, प्रेम सिंह सिसोदिया, पूरन वर्मा, भगवान सिंह परमा, रमेश प्रजापति, राकेश, तनुश्री और देवाशीष हजारिका।
0: चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।

0: हेलो हाफ लॉन्ग,
1: हाँ जी नमस्ते।
0: नमस्ते। बताइए आपका नाम।
1: योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: योगेश जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अच्छे हैं।
0: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: फिल्म मंजिल से सुनवा देंगे, रिमझिम गिरे सावन।
0: चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।

0: हेलो हाफ लॉन्ग,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। आपका नाम?
1: धीरे लंबारी बात कर रहा हूँ गुजरात से, आपका नेम है छोटा। मौसम कैसे आप होंगे?
0: मौसम तो अभी फिलहाल बारिश हो रही है।
1: जी, अच्छी बात है। कैसी हो दीदी आप?
0: मैं बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हैं?
1: हम भी अच्छे हैं, और आकाशवाणी आप लोग परिवार सब सब कुशल होगे, और हमारे श्रोताओं भी सब यानी सब कुशल होगे। और हमें आकाशवाणी आप लोगों के सभी कार्यक्रम पसंद आते हैं, जिसमें ज्यादातर फोन इन कार्यक्रम हमें बहुत पसंद आता है दीदी।
0: जी धन्यवाद। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप?
1: गाना सुनना है, रुदाली फिल्म का गाना सुनना है, और गाने के बोल है दिल हूँ करे, और गाया है लता मंगेशकर।
0: चलिए आपकी फरमाइश का ये गीत सुनते हैं।
1: धन्यवाद।

0: हेलो हाफ लॉन्ग,
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार। आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: बहुत दूर से बात कर रहा हूँ, पहली बार कॉल लगी है आपके स्टेशन में। मेरा नाम है शेख जफर हसन, क्वाड जिला रोहतास बिहार से बात कर रहा हूँ मैडम।
0: जी, बहुत ही बढ़िया। पहली बार आप कॉल कर रहे हैं, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: एक शेर सुनिए है।
0: जी
1: कभी रास्ते बदल गए, कभी इरादे बदल गए, हम न बदले मगर तेरे वादे बदल गए। मोहब्बत के अंधेरे में पत्थर पिघल गए, रैरों से क्या गिला जब अपने बदल गए।
0: बहुत ही बढ़िया।
1: अगर आप इजाजत देंगी तो दोस्त, दो तीन दोस्त के नाम उनका ले लूं जो कि प्रोग्राम से पूरे हिंदुस्तान में जुड़े हुए हैं वो।
0: जी बिल्कुल
1: जी, तो ये है भदरवा जम्मू कश्मीर के पुरुषोत्तम कुमार,
0: जी।
1: अष्टपुरा मऊ के उस्मान अली अंसारी और अनवर बिहारी, फिल्म हमसाया मोहम्मद रफी ने गाए थे, गाने के बोल है दिल।

0: हेलो हाफलोंग
1: हेलो हाफलोंग,
0: जी, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं रंगापारा सोनितपुर असम से बात कर रहा हूँ। अमल,
0: अमल जी, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप?
1: आज मैं तेरे नाम फिल्म का गाना सुना है, ये तोबा ये दाजगी। जी, मेरा दोस्त है बिमल बसुमतारी, भाईकोन मुंडा, रमेश पात्र और भगवान सिंह परमार, रमेश प्रजापति, हितेंद्र दास, रघुबली मिठा और देवाशीष हजरिका, प्रेमजीत चक्रवर्ती और प्रेम सिंह सरसदिया, केसरी सिंह राजपूत और राकेश और पूरन वर्मा।
0: जी धन्यवाद। चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।

0: हाफ लॉन्ग, नमस्ते, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी, मैं सोनारी डिस्ट्रिक्ट से भाईकन मुंडा बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: यदि आज सुनना है 2002 में आई फिल्म क्रांति, बॉबी देओल वाली, उसमें गाना है दिल में दर्द का जगह है, ये गाना सुनना है। ये दोस्तों के नाम लेना चाहूंगा
0: जी
1: जो आकाशवाणी आप लोग नियमित सुनता है।
0: जी
1: अमल बसुमतारी, विमल बसुमतारी, जोगेंद्र रोंगटी, रमेश पात्र, रोनू पात्र, लाखी, अंजलि बसुमतारी, दरअसल बसुमतारी, गौतम रायगोले जी, भगवान सिंह परमार जी, गंगाधर सावनकर जी और हेलो फ्रॉम सेक्टर ग्रुप के सभी सदस्यों को ये गाना डेडिकेट रहेगा।
0: जी चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश का।

0: हेलो हाफ लॉन्ग।
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, बताइए आपका नाम।
1: मैं रमेश प्रजापति, ग्राम माया, तहसील आईटी, जिला सीहोर, एमपी से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप।
1: फिल्म का नाम है हीरा।
0: जी
1: मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने।
0: जी
1: कुछ मित्रों को याद कर लो क्या? हमारे मित्र है तनुश्री है, बिटिया हमारी,
0: जी बिल्कुल।
1: और रक्कू बिले मेहता है, भाई को मुंडा है, रमेश पात्र है, अमर सिंह साहू है, और गोल्डी है, अमन भस्माकारी है, विमल भस्माकारी है, शिवा है, राकेश है शिमला से, अविनाश जी है, पूनम जी है कानपुर से, पूर्णमा जी है, पूरम बरवा जी है, भगवान सिंह है, और मांगीलाल चंदेल है, केसरी सिंह राजपूत है।
0: जी धन्यवाद। चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।

0: हेलो हाफ लॉन्ग,
1: नमस्कार मैडम। चक्का
0: नमस्कार, बताइए आपका नाम।
1: भटकम जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से डी आर नागवानी।
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: गाना सुनने का बरसात का मौसम है,
0: जी
1: यहाँ पे भी पानी बरस रहा है।
0: जी
1: अब
0: जी
1: 3-4 दिनों से लगातार पानी आया हुआ है। मौसम बढ़िया सुहाना हो गया है। तो
0: जी
1: एक बात ये कहूँगा कि भीगे मौसम की खुशबू इन हवाओं में हो, आपकी यादों का एहसास इन फिजाओं में हो, यूं ही सदा रहे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट, खुदा का ऐसा असर हमारे दुआओं का हो। आज पट जाइए तो हमें उठाइयो। नमक हलाल पर गीत है।
0: जी धन्यवाद। चलिए आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।

0: हेलो हाफलोंग
1: हेलो हाफलोंग,
0: जी, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप? आप जी बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप? जी चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत। धन्यवाद।
1: थैंक यू।
2: जिंदगी

तो ये था आज के हेलो हाफलोंग कार्यक्रम का आखिरी कॉल। कल फिर से मैं हाजिर रहूंगी आपके साथ हेलो हाफलोंग कार्यक्रम की और एक कड़ी लेकर। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर है 9435700596। आप अपने कॉल के जरिए आपके पसंद का गाना अपने दोस्तों को डेडिकेट भी कर सकते हैं। कॉल करने का समय रहेगा बुधवार के दिन दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टा हैंडल आकाशवाणी हाफलोंग है। तो आज के लिए मुझे यानी रिनी को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलोंग। धन्यवाद।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे आप सभी का पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग, जिसे प्रस्तुत किया था रिनी देव ने। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों अभी आप सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित चित्रगीत कार्यक्रम। पहला गीत फिल्म यारिया से मोहम्मद इरफान की आवाज में। आनंद लीजिए इस खूबसूरत गीत का।

आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों पर आधारित चित्रगीत कार्यक्रम। अगला गीत फिल्म पीके से शान और श्रेया घोषाल की आवाज में। आनंद लीजिए इस प्यारे से गीत का।

दोस्तों, अगला गीत फिल्म ए दिल है मुश्किल से गायक कलाकार अरिजीत सिंह के आवाज़ में, और ये चित्रगीत कार्यक्रम का आखिरी गीत है।

दोस्तों, आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों पर आधारित चित्रगीत कार्यक्रम। और ये आखिरी गीत आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म ए दिल है मुश्किल से। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। हमारी आज की ये दूसरी सभा यहीं पर समाप्त होती है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात के 10 बजने में बस कुछ ही सेकंड्स बाकी है। आप सभी से आज के लिए मैं अर्पिता इजाजत लेना चाहूंगी। कल की पहली सभा में यानी कि 6 बजे आप सभी से एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।